ऐसी कुछ निमाने की कोशिश जो दास ने कुछ ट्यून्स कुछ गाने पेश करने की निमाने की कोशिश की। ये कुछ ताल च होंगे हैं कुछ बेताले भी हो जाते हैं क्योंकि तपले वाला साढ़े नाल नहीं है। दास कोशिश करता है इस ताल विच प्ले करे फिर भी आउट ऑफ ताल चले जाते हैं। चलो जितना भी दास इन नौजवानों का इंटरमेंट का इंटरटेनमेंट कर सकता है दास करता है। अज मैं उन नौजवानों का नाम का जिक्र करेंगा जड़े दास नू हमेशा ही हौसला देंदे रहिंदे हन साडी हौसला अफजाई करते रहिंदे हन। हौसला एक बहुत बड़ी चीज़ है। हौसले नाल ही चाहे तुसी जिद्दां दा मर्जी गाओ कोई भी काम करो उस पिछे सफलता हौसले दी हुंदी है। हौसला जड़ा है बच्चे नू बुलंदियां बंदे नू बुलंदियां तक लै जांदा है। हौसला बंदे नू उच्ची उचाइयां तक लै जांदा है। जे को हौसला देवे ढहंदियां कलां वाला बुलंदी तो नहीं जाता। चलो एनी हो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा फिर भी उन्होंने नाम दसन लगा हाँ। अगर किसी का नाम इस तो मिस हो गया तो दास नू दस देना दास उन्हों का नाम नैक्सट लिस्ट विच लिख देवेगा। मैनू पता है कुछ नाम मिस होए हैं क्योंकि बाई फेस मैं उन्होंने जानता हाँ पर नामों बारे नहीं जानता। मेरी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं कभी शॉपिंग सेंटर मिल जाते हैं कभी पब्लिक प्लेस से मिल जाते हैं। पहला नाम है जे पी मान फ्रॉम लीटन पम्मा रकवा जस्सा रकवा अमन लीटन पम्मा रकवा जस्सा रकवा

ने हुण आया टाइम देख बुले लुटदे ने जिंदगियां पहला है तंगियां चो लंगियां ने दिन रात जागदे आ अरनिंगा चंगियां ने दिन रात जागदे आ अरनिंगा चंगियां ने दिन